0: और मैजुन व्यवहार काची जाची ये एक गति नाशियो
1: सजन वृद्ध समस्त दाजो भाई मामरो नाम अधिकार आयो स्वर्ण वज कविता प्रश्न

नारायण हो एक दिन गोकुर के बने यो व्यवहार में के स्त्री पुरुष को बेटा न भईकन सृष्टि न होने तेस कारण सृष्टि को लगी केटी मांगना जान पर्ने तेस कारण वसुदेव देवकी मांगना भनकन नारायण।

जंजु वंशिन राजे का लानू जाइनो लानू जाइनो ए कृष्ण लानू जाइनो जंजु वंशिन राधिका लानू जाइनो।

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: के तपाईँ चरीकोट काठमाडौँ यात्रा

0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: नमस्कार रेडियो शैलों सामुदायिक एफएम बैंडमे थोपलो 7 MHz बाटो म पदे प्रसाद सापकोटा आज विक्रम सम्मत 2083 साल श्रावण शुक्ल पक्ष सन 2026 अगस्त 14 तारीख श्रावण 29 गते शुक्रवार द्वितीय तिथि अब स्तुति गरौं
1: आयु द्रोण कुमार कैसरी आओ साक्षण कल्पय भरी।

धर्म कुमार कैसरिया हो श्री ब्रह्म ज्ञान याने विदुर कैसरी ज्ञान हव शिशु जन्म मनुन बड़ाले पने कृति उज्ज्वल सुत सहित।

0: गोपी नी काली नी काकी ना खाई नी सारी छाई दोरी छाई लानी को
1: अरे को देखो छाई ना
0: रुमने को मन में नगरो आ भनका हाथ जोड़ी कर
2: एडा कुर्सी ने
0: रास्ता गर्दै थिए
3: हजुर हजुर
0: आ शत्रु बाबु नारायण कदम का रुकाउ माथि चले र
3: हेरे कम समस्या हेर
2: बौसी बनाउ
3: हरि हरि
0: यो मुमुरा
4: हे